0: そして水が切れるように小さめのボウルの上に乗せておきましょう。
1: 研いだお米は、チャリーコ किसी छोटे बर्तन पर रखकर तमाम पानी निकल जाने दीजिए। गो के चावलों से निकलने वाला पानी अभी भी गदला होगा, लेकिन चावलों को दोबारा पानी से निकालना काफी है। अहम बात यह है कि चावल साफ करने का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ ज्यादा वक्त लगाएंगे तो चावल भुरभुरे हो जाएंगे।
2: 10 मिनट के बाद जब पानी निकल जाए तो चावल किसी बर्तन में डालिए। अब पानी की दुरुस्त मिकदार का इजाफा कीजिए और 30 मिनट के लिए चावलों को पानी में भिगो दीजिए।
1: अब बर्तन पर ढक्कन रखकर दरमियानी आंच पर पकाइए। पानी में उबाल आने के वक्त से पकवाई के दौरानिये का ख्याल रखना जरूरी है, लिहाजा देखते रहिए कि पानी में उबाल किस वक्त आ रहा है। ढक्कन उठाने के बजाय आवाज या देगची से निकलने वाले बुखारात से अंदाजा करने की कोशिश कीजिए।
2: जब पानी में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दीजिए और टाइमर पर वक्त सेट करके ठीक 12 मिनट तक पकाइए।
0: 時間が来たので火を止めましょう。
1: वक्त पूरा हुआ, आइए अब आंच बंद कर देते हैं। अभी ढक्कन को मत उठाइए और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस अमल को जापानी में मुराशी कहा जाता है। चावल इस अमल के बाद ही तैयार होते हैं।
2: जब चावल दम पर हो तो उस दौरान सार्डिन तैयार कर लीजिए। सार्डिन को कटिंग बोर्ड पर रखकर इसके छिलके उतारने से आगाज कीजिए। मछली के बैरूनी हिस्से पर दुम से सर की जानिब छुरी चलाते हुए इसके छिलके उतार लीजिए।
1: सार्डिन मछली जितनी ज्यादा ताजी होगी उतने ही इस पर छिलके मौजूद होंगे। उसके सर को अपनी उंगलियों से पकड़ लीजिए और मछली को पलटते हुए तमाम सतह से छिलके उतार दीजिए। उसके बाद सर को उसकी निचली तरफ से काट दीजिए। अब हम इसे बटरफ्लाई अंदाज में खोलेंगे।
2: मछली के पेट की निचली जानिब एक सख्त सी जगह होती है, लिहाजा छुरी को उसके मुखालिफ समत तिरछा करते हुए इसे काटें। यहां से शिगाफ बनाते हुए मछली की दुम की जानिब मौजूद सुराख तक ले जाइए। अब इसकी अंदरूनी आंतों को साफ कर लीजिए। चारों सार्डिन मछलियों को ऐसे ही साफ कीजिए। एक प्याले में काफी ज्यादा पानी डालकर मछली को धो लें। दरमियानी कांटे और पसलियों में अभी कुछ खून लगा रह गया होगा, उसकी वजह से मछली में बसांत पैदा हो सकती है, इसलिए इसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। प्याले में ताजा पानी लेकर मछलियों को दोबारा धोएं और पेपर टॉवल से इजाफी पानी खुश्क कर लें।
1: और अब बारी है तेबिरा की, यानी सार्डिन को बटरफ्लाई अंदाज में खोलने की। सबसे पहले सार्डिन को हथेली पर इस तरह रखें कि हथेली का रुख ऊपर की जानिब हो। जिस हिस्से से आपने मछली का सर काटा है उसे दाएं जानिब रखिए। दुम का हिस्सा बाएं जानिब हो और पेट आपके चेहरे की जानिब हो। अपने दोनों अंगूठे मछली के अंदर ऐन दरमियानी कांटे के ऊपर रखें।
0: 親指の爪の先が背びれに向かって行くように角度を気をつけて。
1: इस बात का ख्याल रखिए कि आपके अंगूठों के नाखूनों के सिरे मछली के अकबी पर की जानिब ठीक जगह पर जमे हों, वरना तमाम गोश्त को कांटों से अलग करना मुश्किल होगा।
2: अपनी उंगलियों के सिरों को थोड़ा सा मोड़े। जब आपके नाखूनों के सिरे अकबी पर तक पहुंच जाएं, तो अपने अंगूठों को दरमियानी कांटे के साथ साथ आगे की जानिब हरकत दें। दाएं अंगूठे को मछली के सर की जानिब और बाएं को दुम की जानिब। इस तरह आप दरमियानी कांटे से गोश्त को अलग कर सकेंगे।
1: मछली के निचले निस्फ हिस्से से दरमियानी कांटे को निकालने के लिए दोनों हाथों के अंगूठों और शहादत की उंगलियों से दरमियानी कांटे के आखिरी सिरे को पकड़े रखिए। एक हाथ को दुम की जानिब ले जाइए ताकि गोश्त कांटे से कुछ अलग हो जाए। दुम और दरमियानी कांटे को हटा दीजिए।
2: तमाम सार्डिन मछलियों को इसी तरह बटरफ्लाई अंदाज में खोल लीजिए। सार्डिन के ऊपर थोड़ी सी सोया सॉस डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब इनमें जायका जज्ब हो जाए तो किसी पेपर टॉवल से इजाफी सोया सॉस साफ कर दीजिए। किसी ट्रे में पोटैटो स्टार्च फैलाकर थोड़ा सा सार्डिन पर लगा लीजिए। आइए अब मछली को

0: गुल, वैसे वतनाबे साहिबा ने बड़ा अच्छा मुतबादल इस्तेमाल किया है बा मछली का, क्योंकि सार्डिन भी गजाइय से भरपूर होती है।
1: जी सोफी, और आपको तो पता ही है कि बाम कितनी महंगी होती है और सार्डिन तो इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल जाती है और जापान में रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो सारा साल दस्तियाब होती है।
0: जी गुल, और दूसरे कई ममालिक में भी इंतहाई आसानी से दस्तियाब होती है।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर ना मिले तो फिर आज की डिश बनाने के लिए कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए?
0: कोई बात नहीं, वही मछली यानी के बाम इस आसानी से अगर आपके मुल्क में दस्तियाब है तो इसे इस्तेमाल करें, जिसके नेमल बदल के तौर पर सार्डिन को इसके की डिश तैयार की गई है।
1: अच्छा, फिर तो बड़ी ये बेहतरीन सी डिश बन जाएगी ना।
0: बिल्कुल वही डिश बन जाएगी। और गुल, अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो कोई भी दूसरी मछली, मिसाल के तौर पर हॉर्स मैकरल वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है।
1: अच्छा चले, मछली का मसला तो हुआ हल जी। और चावल भी आप हमेशा बताती हैं कि जो चावल भी आप सामने के इलाके में आसानी से दस्तियाब हो उसे थोड़ा सा नरम करके पका लें,
0: बिल्कुल
1: खिचड़ी के अंदाज में। तो ये ठीक ठीक सबक बताया ना मैंने आपको,
0: खिचड़ी के अंदाज में नहीं, थोड़ा सा नरम
1: थोड़ा नरम कर लिया। खिचड़ी ज्यादा नरम होती है क्या?
0: खिचड़ी ज्यादा नरम हो जाएगी इतना नहीं।
1: चलिए,
0: इसके अलावा गुल, पोटैटो स्टार्च ना मिले तो कॉर्न स्टार्च से भी काम चल जाएगा। मैं भी अक्सर पोटैटो की जगह कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल कर ही लेती हूँ।
1: अच्छा चलिए, ये तो हो गए जनाब नेमुल बदल अज्जा।
0: बिल्कुल,
1: और बाकी अज्जा तो हर जगह बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं, तो हमारे सामने ये डिश मेरा ख्याल है कि बना ही लेंगे अब तो।
0: बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। एक चीज भूल गए आप।
1: अच्छा कौन सी?
0: सानशोया पेपर लीव्स।
1: ओहो, ये तो भूल ही गया। अच्छा अगर इसे ना भी सजाया जाए तो काम तो चल जाएगा ना?
0: वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से किसी डिश में चार चांद लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे पुदीना, धनिया वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मछली के साथ सोया एक हर्ब होता है जो हमारे यहाँ और कई मुल्कों में पाया जाता है, और मछली के साथ इसका बड़ा अच्छा इम्तिजाज होता है।
1: अच्छा, यानी आप कहना चाह रही हैं कि अगर आज की तरकीब में सोए को सानशो की जगह डाला जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और गुल, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सामने गर्मियों में ये डिश जरूर बनाएंगे।
1: जी अगर बनाए तो हमें जरूर बताइएगा।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
3: जी सामाई, प्रोग्राम आपने सुना और सुनकर यकीनन आपका बेखाबाया के दोन खाने का दिल चाहने लगा होगा और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। वैसे जब हम छोटे थे तो अम्मी कहा करती थी कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में मछली कम खानी चाहिए। और वैसे भी गर्मियों में गोश्त या मछली से ज्यादा सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब, जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम के मुनासबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो खाबाया के दोन, जिसे मौसम गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से साम्मा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह यह समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरूज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया के दोन जरूर बनाएं और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं, और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।